अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: रामचंद्रला भगवान की, श्री आनंद गंद भगवान की, श्री कौसल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री कैकेयी नंदन भगवान की,
1: जय
0: श्री सुमित्रा नंदन भगवान की,
1: जय
0: श्री चारो भैयन की,
1: जय
0: श्री हनुमान जी महाराज की,
1: जय
0: श्री राम जन्म भूमि की,
1: जय
0: श्री कृष्ण जन्म भूमि की,
1: जय
0: श्री काशी विश्वनाथ की,
1: जय
0: श्री अयोध्या धाम की,
1: जय
0: श्री सरयू महारानी की,
1: जय
0: जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की,
1: जय
0: गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की,
1: जय
0: समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्वसंत वैष्णव भगवान की सत्य।

भर्जनम् भवबीजानाम् अर्जनम् सुरसम्पदाम् गर्जनयमदूतानाम् राम रामेति गर्जनम् श्रीसीतारामनाम् महाराज की। सन्तबले परमारथी भेषधरे अवधूत राम नाम की गर्जना भाग जाय अवधूत श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री राम लला भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जै जै श्री राम।

श्री गोविंद गीता अध्याय 18 है, मोक्ष संन्यास योग। श्री मद्भगवद गीता के अंतिम एवं सबसे बड़े अध्याय में इस संवाद का सारांश है। अर्जुन संन्यास व त्याग के विषय में जानना चाहता है। श्री भगवान कहते हैं कि देह कष्टों से भयभीत होकर कर्म त्याग की अपेक्षा कर्म के फल का त्याग ही त्याग का मर्म है।

0: का।
1: प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर श्री कृष्ण कर्ता, धरती, ज्ञान, कर्म एवं सुख आदि का विस्तृत विश्लेषण करते हैं।

तत्पश्चात श्री कृष्ण परम गुह्यतम वचन कहते हैं कि हे कौंतेय, तुम मेरा ही चिंतन करो, मेरा ही पूजन करो, मुझे ही नमस्कार करो, वह मेरे भक्त बन जाओ, सभी धर्मों का परित्याग कर मात्र मेरी ही शरण में आओ। मेरा यह वचन सत्य है कि तुम सभी पापों से मुक्त होकर मुझको प्राप्त करोगे।

श्री कृष्ण इस महान संवाद के पठन श्रवण एवं वाचन का महत्व तो बतलाते हैं। वह अर्जुन से पूछते हैं कि इस दिव्य संदेश के बाद क्या तुम्हारा मोहजन्य अज्ञान नष्ट हुआ? अर्जुन का उत्तर सकारात्मक है। संजय धृतराष्ट्र के समक्ष

दिव्य संदेश व भगवान के दिव्य विश्व स्वरूप को स्मरण करता हुआ रोमांचित होकर कहता है कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण व श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है, वहां नीति है, ऐश्वर्य है, धर्म है, वह उस पक्ष की विजय सुनिश्चित है।

श्रद्धालु प्रभु भक्तों, गोपाल नंदन दुहते जिनको उपनिषद सब गऊ समाल, पार्थ वत्स हर साधु भक्ता, गीतामृत है दुग्ध महान। श्री हरिमुख से उद्घोषित इस मधुर वाणी का आपने रसा स्वादन किया। इस दिव्य संदेश के पठन, वाचन, स्मरण एवं श्रवण का लाभ अलौकिक है। शास्त्रों में कहा गया है कि पवित्र गीता शास्त्र करे जो पठन प्रेम से युक्त हो, प्राप्त करे वो विष्णु धाम को भय शोकों से मुक्त हो। सचमुच गीता सुवाचन व श्रवण परमेश्वर की अनन्य भक्ति का सर्वोत्तम माध्यम है, क्योंकि मंत्र एक है नाम उसी का, कर्म एक है उसकी सेवा, शास्त्र एक है गीता जिसकी, एक देव की सुख है देवा। आइए इस सर्व मंगलमयी, सर्व अर्थमयी, सर्व धर्ममयी, सर्व शास्त्रमयी, स्वयं परमेश्वर की प्रतिनिधि स्वरूपा श्री मद्भगवद गीता की प्रेम पूर्वक आराधना करें।

विश्व की उत्पत्ति, उसके विकास और परिवर्तन का मैं साक्षी रहा हूं। मैंने ही सरिताओं को सागर यात्रा के आरंभ में शिवास्ते पंथाः संतु के आशीष दिए हैं। नदी जो कि स्वभाव से तरल उर्मिल और वत्सल है, तथा महाभारत कार ने जिसकी विश्वस्य मातर कहकर पूजा की है, ऐसी एक नदी उसका आज स्मरण करता हूं। त्रितयुग में वो कृतवती, त्रेता युग में गिरिकर्णिका या मणिकर्णिका, द्वापर में विधुमती चंदना या चंदनावती, और कलयुग में साबरमती या साबरमती के नाम से जानी जाती है। उसके प्रवाह को

0: साफ सहमति
1: वंदन महाकाल। कैसे स्मरण किया मुझे?
0: पल भर रुक जाओ, तभी तो कहूँ ना।
1: आप भी कब रुके हैं? बहते रहना, यही तो हम दोनों का स्वभाव है ना? चलिए बातें करते करते साथ चलते हैं।
0: तुम्हें देखता हूँ और गहराई में जाता हूँ तो अतीत जीवंत हो जाता है। 88,000 ऋषियों ने आपके तट पर तपस्या की है।
1: यह मेरा परम सौभाग्य है प्रभु।
0: आप काश्यप गंगा के नाम से भी लोक हृदय में विराजमान हैं और फिर आपकी मुख्य धाराएं अरण्य में होकर आनर्त और श्रभ कहे जाने वाले आज के मेवाड़ और गुजरात में बहने लगी।
1: हाँ प्रभु, और अरावली की गिरिमाला में छलांग भरने से डरती हुई मैं इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी होकर काले पहाड़ से निकल पड़ी। ऐतिहासिक नगरी उदयपुर राजस्थान के जिला परिषद के प्रमुख श्री भैरवलाल सारनोट भी मेरे बारे में कुछ यही कह रहे हैं।
2: राजस्थान के अंदर लगभग 44 किलोमीटर के अंदर का पानी साबरमती में जाता है, जिसको साई और वाकल दो नाम से नदियां पुकारी जाती हैं। साई नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसका पानी जवे बांध को जाता है, जो पीने के उपयोग और उस इलाके में काम आता है। बाकी पानी सारा बह करके साबरमती में जाता है और जो हिस्सा हमारे राजस्थान में से निकल रहा है उसके किनारे पर आदिवासी और गराशिया दो जाति के लोग विशेष तौर से बसते हैं और ये इनका पानी का उपयोग लिफ्ट करके चाहे वो पंपिंग सेट से हो, चाहे इलेक्ट्रिक पंप सेट से हो, चाहे रेंट से हो, चाहे चरस से हो, उसका उपयोग अपने जीवन को खाने पीने की वस्तु और एग्रीकल्चर खेती वगैरह करते हैं, जिससे अपना भरण पोषण करते हैं। इसी के साथ इस इलाके में अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है और इसमें बीच बीच में पोखे जा गए हैं, तो विशेष तौर से 3/4 हिस्सा जो इसका क्षेत्रफल है, 3/4 हिस्सा टोटल फॉरेस्ट का है। फॉरेस्ट काफ़ी घने थे लेकिन अब काफ़ी डैमेज हो चुके हैं और नए फॉरेस्ट लगाने की काफ़ी कार्य हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्दी ही ये इलाका वापस आपके पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा हो जाएगा।
1: भक्ति में लीन ऐसी मीराबाई की चरण धूली सिर पर चढ़ाकर मैं बाप्पा रावल, महाराणा प्रताप तथा भामाशाह के शौर्य एवं औदार्य की कथाओं को मन में रखते हुए आगे बढ़ी तो देखा मेरे किनारे पर असंख्य साबरों का वास।

0: वह आ गई नदी से। ये मेरा प्रथम संगम और अब आएगा स्वदेश।
1: हाँ, यानी कि साबर कहाँ था?
0: वही देलवाड़ा गांव के पास गोगुंडा के गणेश के आशीर्वाद से पावन वाकल ने मेरा स्वागत किया। विशाल जलराशि युक्त वाकल से मिलने के बाद ही मेरी देह बदली।

0: दक्षिण तट पर बनासकांठे के जंगलों का दांता प्रदेश और वाम तट पर ब्रह्मा जी का महिमावान खेड़ ब्रह्मा विस्तार, दोनों ही आदिवासी प्रदेश। दांता के सणाली आश्रम की शिक्षा प्रणाली यानी आदिवासियों के जीवन परिवर्तन की पगडंडी।
1: हमारा नाम सुमेर सिंह गंभीर सिंह सोलंकी, प्रमुख तालुका पंचायत दांता, जिलों बनासकांठा।
2: अध्यक्ष तालुका पंचायत दांता, जिला बनासकांठा। दांता तहसील के पूर्व विभाग में पर्वतीय विस्तार है, वहाँ अधिकांश आदिवासी लोगों की बस्ती है। आदिवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन है। दांता तहसील में साबरमती के तट पर सोनाली आश्रम की स्थापना 1957 में की गई थी। इससे पहले आदिवासियों की स्थिति बहुत कंगाल थी। अब शिक्षा और खेती के क्षेत्र में हम आदिवासियों की स्थिति बहुत ही अच्छी है।
3: माकड़, चंपा और हड़ाद के चूने के पत्थरों की खनिज संपत्ति से मेरे तट पर सीमेंट उद्योग का श्री गणेश हुआ। ये तो बिल्कुल आज ही की बात कही जाएगी। खेरोज के पुल के नीचे स्नान करते हुए यात्रीगण और मेरे पट को हरियाला रखने वाले खरबूजे और टमाटर की बाड़ियों की बात किए बिना तो आगे कैसे बढ़ा जा सकता है।
4: रावर शंकर भैरव भाई गांव खेरोज ना वतनी से साबरमती में
2: रावल शंकर भाई रेवा भाई खेरोज गांव का रहने वाला हूँ। साबरमती नदी के अंदर सब्जियां उगाने का व्यवसाय करता हूँ। टमाटर, बैंगन, लौकी जैसी सब्जियां उगाते हैं और इससे हमारा गुजर बसर कर लेते हैं। हमारे पूर्वज भी यही किया करते थे और आज तक हम भी यही काम कर रहे हैं। हम ये सब्जियां लेकर खेड़ ब्रह्मा जाते हैं और उन्हें बेचकर अपना पेट पालते हैं। मेरा नाम सीवी। सब्जियां और खरबूजे तरबूज उगाकर 2-3 हजार रुपये कमा लेते हैं और बच्चों का पेट पाल लेते हैं। हम जो कर रहे हैं वही काम हमारे बच्चे भी करेंगे, क्योंकि उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती। हम गरीबों की ओर कोई देखता तक नहीं तो नौकरी का प्रश्न ही कहाँ उठता है। साबरमती ने जो कुछ बोया है वो उग आए तो हमारा गुजरान चल जाएगा, पर फसल अच्छी न हुई तो फिर हमारा तो ईश्वर ही है।
0: और उस पार साबरकांठा का पोशीना। यहाँ आपका पट पथरीला गोल

के बसे आदिवासियों ने आपके दोनों किनारों को जीवंत रखा है। आगे जाने पर खेड़ब्रह्मा के लांक, इधर के मारवाड़ तथा दांता के विदलासन के पास आपको हरणा

0: तुल्य मंदिरों के अवशेष आज भी भव्य अतीत की प्रतीति कराते हैं।
1: आपके ऊपरी प्रदेश में भारी वर्षा होने पर आप छलक जाती और आपका पानी तट पर स्थित प्रदेशों पर फैल जाता। इसी बात को ध्यान में रखकर खेरालू तहसील के धरोई गांव में आप पर बांध बनाया गया है।

0: धरोई डैम जो यहाँ जो देख रहे हैं वो धरोई डैम का जो विभाग है यहाँ से मैं सारे पाला जी जो यहाँ मैं शायद बजा रहा हूँ। मेरा नाम है डीडी पंचाल। ये नदी है साबरमती नदी अरवली हिल्स में से निकलती है। ये धरोई डैम बनाने से हमारे 140 गांवों को असर हुई है। ये सब लोगों को हमने पुनर्वाहिएट किया है दूसरी जगह पर। ये डैम बनाने से कुल मिला के 56,000 एक्टर की वो प्लानिंग है। इसके अलावा अहमदाबाद को हम पानी देते हैं, ए सी को पानी देते हैं, जी बोर्ड को पानी देते हैं गांधीनगर में और गांधीनगर टाउन में भी पानी देते हैं।
1: वो दूर दिखाई देता है इबेरिया गढ़।
2: सातवीं सदी में यहाँ चीनी प्रवासी ह्यूएन त्सांग आया था। आज इधर अपने ग्रेनाइट पत्थर और खराही के व्यवसाय से मशहूर है। एक लारा महादेव के दर्शन कर आगे बढ़े इससे पहले इस प्रदेश में पैदा होने वाले गुजरात के मूर्धन्य कवि श्री उमाशंकर जोशी, उपन्यासकार श्री पन्नालाल पटेल को याद कर लें।
1: पूरा साबरकांठा कपास का घर माना जाता है। आपके नाम से जुड़ी साबर डेरी और यहाँ की सहकारी प्रवृत्ति को कैसे बुलाया जा सकता है? ये रही साबर डेरी के अध्यक्ष हेमा भाई पटेल।
0: साबरमती के किनारे पर साबरकांठा जिला में सहकारी प्रवृत्ति द्वारा 10 तालुकों में 12 तीन फैक्ट्री डाली गई है। इसमें से कपास का उत्पादन किया जाता है और मार्केट से अच्छी तरह की जाती है। इसके इससे खरीदों को सारी आमदनी मिलती है। आमदनी का अंदाजा लगाया जाए तो 100 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वो कपास के सहकारी पर हम सब लोग सक्सेस हुए, इसके मुताबिक हमने बिजनेस को अच्छी तरह खतरा करने का निश्चय किया। इसके फायदे में हमने सबसे पहले गुट का धंधा चालू किया। 13 जितनी मंडियों हमने बनाई हैं। वो संगठन द्वारा हर एक गाँव में से हर रोज 6 लाख लीटर जितना दूध इधर आता है। पूरा मिलकर हमने 40 करोड़ का लाभ खरीदों के लिए लिया है अमृतगी के पास से। और साबरकांठा जिला का एक अच्छा उद्योग यहाँ सहकार संगठन द्वारा आपके सामने मौजूद है।
1: सामने किनारे पर विजयपुर तहसील का ख्यातनाम जैन तीर्थ महुड़ी जो श्री घंटाकरण

0: मंदिर के पास ही खड़ाओ का वणिको का सुप्रसिद्ध यात्रा धाम यानी कोटियार्क का मंदिर। इस स्थान पर पहले एक बौद्ध नगरी थी।
1: इस परम धाम का विशेष महत्व

0: सावरमती के संगम के बाद ही सावर आप सावरमती बनती हैं, एक महान नदी का रूप धारण करती हैं। यहाँ 40 मीटर ऊंची चट्टानें, घनी बंदराई और कराल कोहर आपके प्रवाह को अनोखा सौंदर्य प्रदान करते हैं।
1: यहाँ से आगे वरसड़ा गांव में मुझे जर्जरी, सिरसरी तथा अमरवेल नदियाँ मिलती हैं। ये मेरा पांचवा संगम। इस स्थान को ऋषिकेश कहा जाता है। देखिए, हम गर्जेश्वर महादेव के सानिध्य में पहुंचे। 40 मीटर की ऊंचाई पर आसन जमा कर बैठे हुए ये महादेव

0: ग्राम भारती संस्था को देख लें, क्योंकि इस विस्तार का वर्तमान है ग्राम भारती। इसके बाद यहाँ के संचालक श्री मोती भाई चौधरी से सुने, यही उचित होगा, है ना?
1: ये गांधी ने जो बताया था राष्ट्र शिक्षा के बारे में, उद्योग के साथ शिक्षा, प्रमुख से भी अलग न हो शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी, और ऊंच नीच का जो भेद, जाति पाति का जो भेद है, श्रम करने वाला के प्रति जो ऊंच नीच का भेद है, इसको निर्मूल करना है तो सब बच्चे साथ में रह के, ऊंच नीच का कोई सवाल रहे नहीं, सब साथ में रहे और काम करते जाए और शिक्षा प्राप्त करे। ऐसा जो बुनियादी शिक्षा का ढांचा उन्होंने बताया था, उसको नजर में रख के हमने उत्तर बुनियादी का काम इधर ये संस्था करके शुरू कर दिया। हम साबरमती नदी के किनारे के पर बसे हुए गांव के साथ रहते हैं, तो साबरमती नदी ने जीवन दिया, इसके साथ साथ इस जमीन को हमने रिक्लेम करने का शुरू किया। लोग हंसते थे कि ऐसे जमीन में कैसे खेती हो सकती है और फिर से ये खेत कैसे बन सकते हैं, लेकिन आज सब देख के अचरज रह जाते हैं कि ऐसा हो के रहा है और अच्छी खेती भी हो रही है।
0: अपने प्रकृति से भारतीय तक मैं जंगलों तथा पत्थरों में भटकती रहूंगी। भारतीय से धरोई तक का मेरा प्रवास पथरीला और ढलाऊ है। मुझमें नहीं का गांधीर्य, तापी का सामर्थ्य या नर्मदा की भव्यता नहीं है।
2: और ये सामने दिखाई देती है गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अहमदाबाद जहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर होगा।
0: हाँ, समग्र राज्य की राजकीय, आर्थिक तथा लोक कल्याण प्रवृत्तियों का केंद्र यानी गांधीनगर। मेरे किनारे पर स्थित इस आधुनिक नगरी के निर्माण नक्शे में फ्रेंच स्थपति ला कॉर्बूसे का असर दिखाई पड़ता है।
3: That Gujarat Stadium in the third test match between India and West Indies, the news is that West Indies are 87.
2: देखो, साबर देखो, खेल रंग लाए हैं। ये तो है गुजरात का मोटेरा स्टेडियम। गुजराती लोग खेल को दिमाग से खेलते हैं, पराजय को हंसकर स्वीकार कर लेते हैं और विजय को मुट्ठी में बरकरार रखते हैं।
3: Lloyd from picking up a single. Lloyd is on 36 and West Indies 88 for the loss of 3 wickets.
2: साबर, यहाँ से आप अहमदाबाद की बन जाती हैं।
0: हाँ, और यहीं पर होता है मेरे अस्तित्व के अर्थ का आरंभ।

0: जगत ने महात्मा गांधी का नाम दिया। उन्होंने मेरे पश्चिम तट पर मेरे ही नाम से बसे साबरमती गांव में जग प्रसिद्ध आश्रम की नींव डाली और मेरे ही नाम से जोड़ा साबरमती आश्रम। आज इस नाम का उल्लेख करते हुए मेरा रोम रोम पुलकित हो उठता है। बापू स्वयं साबरमती के संत कहलाए और मैं धन्य हो गई।
1: यहाँ आपको चंद्रभागा नदी मिलती है, यह आपका छठा संगम। आज का अहमदाबाद यानी किसी समय के आशा झील का आशावल, फिर आशावल समृद्ध कर्णावती बना। उस समय कर्णदेव इसका राजा, अहमदाबाद की नील इसी सन 1411 मार्च की चौथी तारीख को रखी गई। उसमें मुस्लिम संत शेख अहमद खत्री गंजबख्श की प्रेरणा रही।

0: अहमदाबाद के निर्माण का प्रथम नमूना है भद्र का किला। मुस्लिम स्थापत्य में 100 खंभों वाली जामा मस्जिद, रानी महजियो, कला कारीगरी में अनन्य ऐसी सीधी सईद की जाली वाली मस्जिद, शाह आलम का रोजा तथा समग्र दुनिया को स्थापत्य कला की एक अद्भुत और आश्चर्यजनक भेंट देने वाली झील की मीनारें मुख्य है।
1: साबरमती, आपके तट पर बसा अहमदाबाद व्यक्ति विशेषों से भी भारत भर में अनोखा रहा है। अहमदाबाद नाम देते ही बाबा माणिकनाथ, यहाँ के टकसाल में काम करने वाले ज्ञानी कवि अखा भगत, भारत के लोह पुरुष और किसी समय इस शहर के नगरपति सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष दादा साहेब मावलंकर, सबकी याद ताजा होती है।
0: इसके अतिरिक्त शीर्ष शिरोमणि कस्तूर भाई लाल भाई, विज्ञान विभूति डॉक्टर विक्रम सारा भाई और ऐसी असंख्य व्यक्तियों की याद हमें गौरवमय बनाती है।
1: अहमदाबाद में फिर से जैसे यंत्रिक का आरंभ हुआ। सेठ रणछोड़ लाल ने 1859 में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना की और देखते ही देखते अहमदाबाद का आकाश नीलों की चिमनियों से छा गया। समग्र भारत की राजकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक हलचल का केंद्र साबरमती आपका किनारा बना। यहीं से भारतवर्ष ने नए युग के आगमन की बधाई दी।
0: प्रभु, आप इतिहास की याद ताजा कर रहे हैं और मैं रोम रोम पुलकित होती जा रही हूँ। मेरे बालू पट पर 1930 की 8 मार्च के रोज आयोजित सभा में आजादी की लड़ाई का जुगल बजा। मैंने देशवासियों के मिजाज को परखा, इतिहास को करवट बदलते देखा और 12 मार्च की दांडी कूच की अभूतपूर्व घटना महाकाल आपके सीने पर भी तो अंकित हो गई। कौवे कुत्तों की मौत मरूंगा लेकिन स्वराज लिए बिना आश्रम में वापस नहीं लौटूंगा, ऐसा दृश्य

उस मुट्ठी भर हड्डियों वाले मानव ने जब दांडी यात्रा को यहाँ से पहला कदम उठाया तो पंथर काल देवता आप और मेरा जल दोनों थम गए थे ना।

0: सरदवाला गांव के पास वाला टीला यानी लोथल हरप्पन संस्कृति को सुरक्षित रखकर दब जाने वाली एक पुरातन नगरी जिसके उत्खनन से ईस्वीसन पूर्व 1100 तथा ईस्वीसन पूर्व 600 के इतिहास के बीच की एक टूटी कड़ी जुड़ गई और एक लुप्त संस्कृति पुनः प्राप्त हुई। वौठा के पास आपको मेसो माध्यम और खेदी को साथ लेकर वात्रक मिलती है। ये आपका 7वां और अंतिम संगम। खारी तथा हाथमती के साथ मिलकर आप सातों नदियों का संगम स्थान सप्तधारा तीर्थ भी कहा जाता है। साबरमती खंबात की खाड़ी दिखाई देते ही आप क्यों उतावली हो गई?
1: मेरे बहते पानी में जो देखा

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी। आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने। एक गोपी बड़ी चालाक थी। उसने क्या किया था कि जहां माखन की मटकी टांगी थी उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध रखी। कन्हैया आएंगे, मटकी फोड़ेंगे, घंटी बजेगी, हम उनको पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे, अपने साथियों के साथ देखा कि घंटी भी बंधी हुई। समझ गए गोपी बड़ी चालाक। तो घंटी को आदेश दिया कि तुम बोलना नहीं, चुप रहना, मेरे साथियों को माखन खाना। मटकी फोड़ी गई, सब साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप। जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं, वो तो सबको खिला के खाते थे। जैसे ही जरा सा माखन मुख से लगाया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी। कन्हैया ने कहा, ये क्या, जब मेरे साथी खा रहे थे तो तुम चुप थी, मैंने जरा सा माखन खाया तुमने बजना शुरू कर दिया। घंटी बोली, हमारे भगवान भोग लगा रहे हो, तुम कैसे चुप रह सकते हैं? हमारा तो काम ही यही है कि जब भगवान भोग लगाएं तो हम सारे संसार को बताएं कि अब प्रसाद ले लो, भगवान ने भोग लगा लिया। बस आ गई गोपी, पकड़ लिया, ले गई यशोदा के पास। यशोदा अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया क्या? और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया,

0: सबसे पहला तर्क दिया।
1: भोर भयो गयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं

दूसरा तर्क दिया, कहने लगे माँ जरा सोचो माखन कैसे खा सकता, इतना छोटा सा बालक, छोटे छोटे हाथ पैर मेरे, और माखन कहाँ टांग के रखते हैं। मैया मोरी।

इशारा किया, कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा तो फंस गए, भूल हो गई, तुरंत उत्तर दिया,

अब कन्हैया ने माँ की खुशामद, माँ की तारीफ शुरू की कि माँ प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी।

विशेष बात हो गई। कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया माने। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई मां नहीं सुन सकती। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के, कहने लगे, मां मैं समझ गया बात क्या है, ये माखन की बात नहीं है। ये माखन का तो तुमने बहाना लिया, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। कहने लगे,

कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया और दोनों कह रहे माखन नहीं खाया।

कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखे शब्दों का, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

इस जगत का पालनहार अपने भक्तों से जैसे प्रेम करता है, वैसे ही अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है। हर भक्त के लिए प्रभु के दरबार के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, मगर ईश्वर तक पहुंच पाना आसान काम नहीं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन, नाम सुमिरन, उसका मनन चिंतन करते हुए आराधना के अलग अलग मार्गों का सहारा लेते हैं, मगर ये सब करते हुए भी जब ईश्वर का साक्षात्कार ना हो तो भक्त हरि से शिकायत के स्वर में याचना करता है, मैं कौन सी राह अपनाऊं कि प्रभु तेरे दर्शन हों।

शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव।

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि भगवान शिव शंकर तथा दैत्यराज शंखचूड के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। श्री विष्णु द्वारा दिए गए उग्र कवच तथा उस कवच में समाये तुलसी के शील के कारण शंखचूड पराजित नहीं हो रहा था। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की सहायता से छल द्वारा वो कवच प्राप्त कर लिया। शंखचूड की मृत्यु हो गई, परंतु उस भक्त को देवाधिदेव के आशीर्वाद से पुनः श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ। वो सुदामा बनकर गोलोक में चला गया। भगवान शंकर ने तुलसी को भी नया दैवी शरीर दिया तथा उन्हें पूर्ण जगत में पूजनीय बना दिया। प्रस्तुत है इससे आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: शौनक जी, आज मैं आपको शिवपुत्र अंधकासुर की कथा सुनाने जा रहा हूं। इस कथा में ये शिक्षा है कि पापी पुत्र का अंत करने में एक पिता को लेश मात्र भी झिझकना हुई।
2: तो सुनाइए ना ये कथा द्विज श्रेष्ठ।
1: शौनक जी, एक समय की बात है, देवाधिदेव के मन में विचार आया कि पृथ्वी का भ्रमण किया जाए। वे देवी पार्वती सहित सभी शिव गणों को लेकर काशीपुर में जा बसे। परंतु
2: क्या मुनिवर सूत जी?
1: काशीपुर था तो रमणीक स्थान, परंतु कैलाशवासी शिव को पर्वतों की शीतलता का ही आभास था। उन दिनों काशीपुर का वातावरण ग्रीष्मकालीन था।
3: ओ स्वामी, इस प्रदेश की उष्णता से आपका बाल पसीने से भीग उठा है। लाइए, मैं अपने हाथों से इसे पोंछ देती हूँ। अरे, ये क्या? ये समस्त जगत में अंधकार क्यों छा गया?
4: आपने पसीना पोंछते हुए अपने हस्त से हमारे नेत्र जो ढक लिए हैं।
3: मेरा ये हस्त आपके नेत्रों से हट क्यों नहीं रहा? आपका पसीना धरती को भिगो रहा है। ये क्या? ये धरती से कैसा विकराल, क्रोधी, नेत्रहीन तथा कुरूप जीव उत्पन्न हुआ है।
4: अब हमारे नेत्रों पर से अपना हाथ हटाइए देवी।
3: जगत फिर प्रकाशमान हो उठा। ये अद्भुत जीव मनुष्य से भिन्न कौन है? हमें इसे भय लग रहा है।
4: पार्वती, आप अपने पुत्र से क्यों भयभीत होती हैं?
3: पुत्र? हमारा पुत्र?
4: हाँ देवी, ये हमारे ही पसीने से उत्पन्न हुआ है, अतः ये हमारा पुत्र हुआ। इसकी उत्पत्ति के समय आपने हमारे नेत्र मूंद लिए थे, अतः ये नेत्रहीन है। हम इसका नाम अंधक रखते हैं। इसका उत्तम लालन पालन अब आपका उत्तरदायित्व है। पुत्र गणेश

0: तथा पुत्र कार्तिकेय के समान आप अंधक की भी माता हैं।
1: स्वामी की आज्ञा का पालन होगा।
2: हे सर्वेश्वर, मैं हिरण्याक्ष वर्षों से आपके दर्शन पाने के लिए तप कर रहा हूं। मुझ अकिंचन पर दया कीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए।

0: हे दैत्यनाथ हिरण्याक्ष, बोल क्या इच्छा है तेरी।
1: हे महादेव, मेरे ज्येष्ठ भ्राता हिरण्यकशिपु अनेक संतानों का सुख भोग रहे हैं, परंतु चंद्रभाल मेरी वंश परंपरा को आगे ले जाने वाला मेरा कोई पुत्र नहीं है।
0: हिरण्याक्ष, तथ्य तो यह है कि तुम्हें पुत्र कभी नहीं होगा।
1: क्या?
0: परंतु दैत्याधिप, मैं तुम्हारे इस कठोर तप से प्रसन्न होकर अपना नवजात पुत्र अंधक तुझे देता हूं।
1: स्वामी,
0: वो तेरी ही भांति पराक्रमी और अजय होगा।
1: प्रभु, मैं धन्य हुआ महाप्रभु, मैं धन्य हुआ।
0: परंतु हिरण्याक्ष, स्मरण रहे, अंधक को कभी ज्ञात न होने पाए कि हम इसके पिता हैं, अन्यथा ये हमारे पास लौट आने को आतुर हो सकता है। हम भी ये तथ्य किसी पर विदित नहीं होने देंगे।
1: आपकी आज्ञा का पालन होगा महाप्रभु, पालन होगा प्रभु।
2: पुत्र प्राप्ति के अहंकार में हिरण्याक्ष की आसुरी प्रवृत्तियां उभर आई। वो देवताओं पर विजय प्राप्त कर पृथ्वी को ही अपने देश रसातल में उठा कर ले गया।
3: फिर पृथ्वी का उद्धार कैसे हुआ सूत जी?
2: भगवान विष्णु ने भयंकर वाराह रूप धारण किया, अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को मुक्त कर उसे यथास्थान रख दिया तथा अपने सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष का वध कर डाला।
3: महाभाग, फिर उसके पुत्र अंधक का क्या हुआ?
2: उसके पिताहीन हो जाने के कारण उसके संबंधी अंधक को प्रताड़ित करने लगे।
4: अरे नेत्रहीन मूर्ख, अब तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे राज्य से क्या लेना देना?
5: हिरण्याक्ष तो और भी मूर्ख था, घोर तप के पश्चात उसने पुत्र पाया भी तो तेरे जैसा असहाय, नेत्रहीन, कुरूप, बेडौल।
4: और फिर तुम हिरण्याक्ष की उत्पत्ति तो नहीं हो, किसी और की उत्पत्ति हो? इस राज्य के भागी नहीं हो सकते तुम।
5: हम हिरण्यकशिपु पुत्र ही इस राज्य के उत्तराधिकारी हैं। मैं कहता हूँ जाओ, अरे जाओ, निकल जाओ हमारे प्रदेश से, जाओ।
4: जाओ।
5: अरे जा जा।
6: यदि मैं हिरण्याक्ष पुत्र नहीं हूँ तो किसकी उत्पत्ति हूँ मैं? कौन है मेरे वास्तविक माता पिता? क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं?
1: पुत्र अंधक,
6: अरे ये तो पिताजी की वाणी है।
1: पुत्र, तू उन सबसे बलशाली है, ब्रह्मा की तपस्या करके अपने इस बल को और सुदृढ़ बना, उनसे वर प्राप्त करके मात्र शिव ही तेरी मृत्यु का कारण बने, ये तेरे मृत पिता की आत्मा की आज्ञा है पुत्र।
6: मैं अवश्य आपकी इस आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे आशीर्वाद दें।
7: हे परम पिता ब्रह्मदेव प्रसीद भव, हे परम पिता ब्रह्मदेव प्रसीद भव, हे परम पिता ब्रह्मदेव प्रसीद भव।
8: हे दैत्येंद्र, तुम कौन हो? किस अभीष्ट से हमारी आराधना कर रहे हो?
6: आपके आगमन से हिरण्याक्ष पुत्र अंधक

0: अपना अभीष्ट बताओ अंधक।
1: हे विधाता, जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है, वे सभी दैत्य भ्राता मेरे अधीन हो जाएं। मेरा ये अंधकार में जीवन प्रकाशमान हो जाए, मुझे दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए।
0: तथास्तु अंधक।
1: चक्षु मिलते ही आपको सशरीर देख मेरा जीवन सफल हुआ परमपिता।
0: अपने हृदय की और इच्छाएं भी व्यक्त करो अंधक।
1: इंद्र मुझे कर दिया करें, देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, स्वयं आप श्री नारायण तथा सर्वेश्वर शंकर भी मेरा वध न कर सके।
0: ये वरदान देना असंभव है दैत्य श्रेष्ठ अंधक, तुम्हें अपने विनाशक को तो निर्धारित करना ही होगा।
1: विनाशक? पिताजी की वाणी ने मुझसे कहा था कि मात्र शिव ही मेरी मृत्यु का कारण बने। ब्रह्मदेव, फिर मात्र शिवजी ही अपने शूल से मुझे मृत्यु प्रदान कर सके।
0: तथास्तु। अंधक, मैं बिन मांगे तुम्हें एक वर देता हूं। मैं अपने स्पर्श से तुम्हें एक सुडौल, सुंदर एवं तेजस्वी शरीर प्रदान करता हूं।

0: हाँ, ये क्या? परम पिता अपने स्पर्श मात्र से मुझे ये पौरुषमय देह देकर लुप्त हो गई। चलो, अपने भ्राताओं के राज्य पर अधिकार करूं।
1: ब्रह्मा, आज आप मृत्यु के उपरांत भी हिरणाक्ष के बुने जाल में फंस ही गए। अंधक को शिव के हाथों मृत्यु का वरदान दे दिया। क्या एक पिता अपने ही पुत्र का वध कर सकता है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। पुत्र अंधक, तू अमर हो गया।

0: नारायण नारायण, परमपिता को पुत्र नारद की चरण वंदना।
1: कहो मुने नारद, इस बार मर्त्यलोक से क्या समाचार लाए हो?
0: परमपिता, इस बार तो सब कुछ विचित्र ही घटित हो रहा है।
1: वो क्या देवर्षि?
0: आपके वरदान से अंधक दैत्यराज बन बैठा है। उसने तीनों लोक जीत तो लिए हैं, परंतु वहां अपना अधिकार नहीं किया है। वो इंद्रादि देवताओं से मात्र कर प्राप्त करता है।
1: तो इसमें विचित्र क्या है नारद?
0: नारायण नारायण, ये तो दैत्य प्रवृत्ति के विपरीत है विधात।
1: फिर तो अंधक की प्रजा बहुत सुखी होगी मुनि नारद।
0: नारायण नारायण, नहीं ब्रह्मदेव, अंधक की प्रजा उससे अत्यधिक आतंकित है।
1: वो क्यों पुत्र नारद?
0: अंधक और उसके तीन मंत्री दुर्योधन, वैधस तथा हस्ती अत्याधिक व्यभिचारी हैं। स्त्री की मर्यादा का मान नहीं करते। जब जिसे चाहते हैं विहार के लिए उठा ले जाते हैं। ये कामांध ना आयु देखते हैं ना रूप वर्ण।
1: अर्थात सृष्टि में नारी जाति असुरक्षित हो गई है।
0: नारी जाति की सुरक्षा के लिए अंधक का नाश आवश्यक हो गया है महाप्रभु।
1: इस बार हम विवश हैं पुत्र नारद।
0: नारायण नारायण, विवश? और आप?
1: हाँ नारद, महाप्रभु क्षीण पड़े अपने पाशुपत व्रत को संपूर्ण करने के उद्देश्य से 1,000 वर्ष की तपस्या में लीन हैं। वे कहाँ हैं

0: किसी को ज्ञात नहीं। स्वयं देवी पार्वती अपनी सखियों जया तथा विजया के साथ एक पर्वत की कंदरा में रह रही हैं।
1: नारायण नारायण, ऐसे काल में महाप्रभु ने ये क्या किया? देवी पार्वती को असुरक्षित छोड़ दिया।
0: परंतु वीरभद्र तथा नंदकेश्वर कंदरा के द्वार की रक्षा करते हैं।
1: परम पिता, ये उचित नहीं हुआ, नहीं हुआ। कहीं अंधक की दृष्टि।
2: अरे रे, ठहर ठहर तो सही। ओहो, ये धूप मैं तेरे लिए ही तो लाई हूँ। यूं कुलाचे भरता रहेगा तो भूखा रह जाएगा। ली ली जया, तू इसे दौड़ाती फिर रही है और देख देख, ये मेमना तो गिरकर आहत हो गया है। अरे मैं इसे कहाँ दौड़ा रही थी विजया, मैं तो घास खिलाने के लिए इसके पीछे पीछे हूँ। अरे रे रे, देख देख, कहाँ बात हुई है आप। अरे अरे, ला ला, मैं भी देखूं।
3: वैदस, हाँ हाँ, इस निर्जन वन में ये सुंदरियां कैसे?
4: अरे दुर्योधन, अवश्य ही यहाँ कोई ऋषि आश्रम है।
3: देख देख वैदस, वो उस कंदरा में तो एक अप्सरा सी बैठी प्रतीत हो रही है।
4: कैसी कैसी अनिध्य रूप की स्वामिनी, परंतु कंदरा के द्वार पर ये वानर रक्षक कौन है?
3: एक वृषभ भी बैठा है।
5: इन्हीं सुंदरियों से पूछते हैं। सुंदरियों?
3: अरे अप्सरा रूपी सुंदरियों, इस निर्जन वन में तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी आयु सन्यास की नहीं है, उपभोग की है।
2: विजया, मुझे तो इन पुरुषों की नियत पर संदेह हो रहा है। हाँ, देखो कैसे ललचाई दृष्टि से हमें देख रहे हैं। और इनकी भाषा भी कैसी अभद्र है ना। चलो चलकर देवी को बताते हैं। चलो चलो
6: देवी, देवी पार्वती।
7: क्या बात है जया, इतनी भयभीत क्यों हो?
2: देवी, कंदरा के बाहर दो विकराल पुरुष खड़े हैं जो बहुत अभद्र अश्लील व्यवहार कर रहे हैं।
7: वीरभद्र, नंदकेश्वर।
8: आज्ञा माते।
7: जाइए, देखिए कौन है, आवश्यकता पड़े तो बलपूर्वक उन्हें वहां से हटाइए। स्मरण रहे, उन्हें ज्ञात ना हो कि हम कौन हैं। वो स्वामी की अनुपस्थिति का लाभ उठा सकते हैं।
8: जो आज्ञा देवी।
9: हम आपको आदेश दे चुके हैं मंत्रीवर दुर्योधन, वैधस और हस्ती, ऋषि पत्नियों तथा ऋषि पुत्रियों को आप स्पर्श भी नहीं करेंगे।
8: वहां हमें कोई ऋषि दृष्टिगोचर नहीं हुआ, मात्र वो वानर तथा वृषभ था।
10: दुर्योधन ठीक कह रहे हैं दैत्यराज, ये अवश्य ही कोई दैवी लीला है।
8: दैत्यराज, आप स्वयं चलकर इस शंका का निवारण क्यों नहीं कर लेते कि कंदरा निवासी वे स्त्रियां कौन हैं?
9: दुर्योधन, दैत्य सेना को प्रस्थान का आदेश दो। यदि आपकी शंका सही है, वो दैवी लीला है और वे वानर तथा वृषभ इतने शक्तिशाली हैं, तो हमें सेना की आवश्यकता पड़ेगी।
8: जो आज्ञा।
2: देवी, अनिष्ट हुआ चाहता है।
7: क्या हुआ जया?
2: हे देवी, पहाड़ी दैत्य सेना हमारे पर्वत की ओर आ रही है।
7: ये तो वास्तव में अशुभ समाचार है। देवाधिदेव की तपस्या अभी पूर्ण नहीं हुई है। हे ब्रह्मदेव, हे विष्णु हरे,

0: आदेश देवी पार्वती,
1: आप तथा समस्त देवतागण देवियों की सेना का रूप धरकर कंदरा के द्वार पर स्थित हों तथा उन दैत्यों से युद्ध करें।
0: ऐसा ही होगा देवी।
2: अरे ये क्या, इतनी व्यापक स्त्री सेना यहाँ कैसे आ गई व्याधस?
3: अरे हमने कहा था ना दुर्योधन, ये अवश्य ही कोई दैवी लीला है। दैत्यराज सेना को आक्रमण का आदेश दें।
4: नारायण नारायण, देवाधिदेव, आपकी तपस्या अति उपयुक्त समय पर पूर्ण हुई है।
5: ये सब क्या हो रहा है नारद मुनि? ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा समस्त देवतागण देवियों के रूप में किससे युद्ध कर रहे हैं?
4: महाप्रभो, आपकी अनुपस्थिति में एक अति कामांत दैत्य राज का उदय हुआ है। उसकी काम वासना इतनी उग्र है कि सृष्टि की कोई भी नारी उससे सुरक्षित नहीं है।
5: काम वासना के वश में आकर असहाय नारी का भोग करने से अधिक जघन्य अपराध एवं पाप हो ही नहीं सकता। हम अपने शूल से अभी इस दुष्ट दैत्य का नाश किए देते हैं।
6: ठहरिए प्रभु शिव शंकर, ये आप क्या अनिष्ट करने जा रहे हैं?
5: ये किसकी वाणी है? प्रत्यक्ष आओ।
6: प्रभु मैं प्रत्यक्ष नहीं आ सकता देवाधिदेव, मैं देह त्याग कर चुका हूं।
5: हम तुम्हें कुछ समय के लिए पुनः अपने रूप में आने की शक्ति देते हैं।
6: मेरी चरण वंदना स्वीकार करें दया निधान।
5: हिरण्याक्ष, तुम
6: देवाधिदेव,
5: तुम हमें किस अनिष्ट से सूचित करवाने की चेष्टा कर रहे हो?
6: महादेव, आपके इस विनाशक शूल का लक्ष्य आपके द्वारा मुझे प्रदान किया गया शिव पुत्र अंधक ही है।
7: क्या? मैं अंधक शिव पुत्र हूँ?
8: क्या शिव पुत्र?
7: अंधक और शिव पुत्र?
8: एक दानव और परमेश्वर का पुत्र?
5: हिरण्याक्ष, ये अवश्य तुम्हारी कोई माया है। हमारा पुत्र अंधक, नेत्रहीन, कुरूप और बेडौल था।
9: क्षमा करें प्रभो, अंधक को ये स्वरूप मैंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रदान किया था। मुझे ज्ञात नहीं था कि वो
5: हमने तथा देवी पार्वती ने ये तथ्य गुप्त ही रखा था। हिरण्याक्ष से भी इसे गुप्त रखने का आदेश दिया था।
10: पिताजी, ये आपने मेरे साथ कैसा अन्याय कर डाला? आपकी मृत्यु के पश्चात ही मैं अपने वास्तविक पिता की शरण में चला गया होता। एक शिव पुत्र की ये दुर्दशा।
5: अंधक, तुमने ये बात सिद्ध कर दी है कि पुत्र भले ही परमेश्वर का ही क्यों ना हो, कुसंगति में रहने से मति भ्रष्ट हो सकता है और वो पिता से ही महादंड का भागी हो जाता है।
10: हे बातें पार्वती, हे पिताजी, जन्म के समय मैं नेत्रहीन था। आपका स्वरूप मेरे मानस पटल पर अंकित नहीं हो पाया। अब जब वास्तविकता मेरे समक्ष उपस्थित है तो मेरा साष्टांग स्वीकार कीजिए।
5: हम एक पापी की ये प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकते।
9: देवाधिदेव, ये असुरराज और कोई नहीं, आपका ही पुत्र है। आप इसका वध कैसे कर सकते हैं?
10: नहीं परमपिता ब्रह्मा, मेरे पूज्य पिताजी को भावनाओं से प्रभावित ना करें। मैं महाकामी महापापी पिता द्वारा दी गई इस मृत्यु

0: मृत्यु को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। जीवन दाता को अपना दिया जीवन वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।
1: कृपा सिंधु, आपके पुत्र अंधक को वासना के इस अंतहीन कूप में डुबोने वाले हम तीन मंत्री ही थे। हम भी आपके द्वारा मृत्यु पाकर शुद्ध होना चाहते हैं।
2: हाँ देवादि देव, हम पर भी कृपा कीजिए।
0: कामांध, ये शब्द कितना सटीक है। परम पिता के आशीर्वाद से दृष्टि पाने के उपरांत भी मैं कामांध हो काम के अंधकार में ही डोलता रहा। हर स्त्री किसी की माता, किसी की बहन, किसी की भार्या होती है, ये मैं भूल गया। मैंने स्त्री की मर्यादा का मर्दन किया है।
3: स्वामी, आपका पुत्र अपने पाप, अपने अपराध स्वीकार कर रहा है।
4: पार्वती, पाप या अपराध स्वीकार कर लेने से वे समाप्त नहीं हो जाते, दंडनीय वे फिर भी रहते हैं।
3: स्वामी,
4: हम परमेश्वर हैं, दंड देने के अपने ही बनाए नियम हम अपने पुत्र के लिए बदल नहीं सकते। हमें अंधक के कुकृत्यों के लिए इसे मृत्यु दंड देना ही होगा। यदि हमने अपने ही पुत्र को उसके पापों के उपरांत क्षमा कर दिया तो हमारी क्या साख रह जाएगी? हमारे भक्तों की आस्था हम पर से उठ जाएगी। बोलो पुत्र अंधक
0: जी,
4: कैसी मृत्यु चाहते हो?
0: एक ऐसी मृत्यु पिताजी जो मुझ जैसे कामियों के लिए उदाहरण बन जाए। मैंने सहस्रों स्त्रियों का शील हरण किया है, उनका शोषण किया है। आप मुझे अपने शूल से भेद कर ऊपर उठा दे। जब तक मेरे शरीर का एक एक बूंद पाप युक्त रक्त न बह जाए, मैं तिल तिल करके मरता रहूं, मरता रहूं, मरता रहूं।
4: तथास्तु पुत्र अंधक।
0: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
5: परम ज्ञानी शौनक जी, इस प्रकार एक धर्मज्ञ पिता ने एक पापी पुत्र का अंत कर दिया।
6: महाभाग सूत जी, ये तो समय समय की बात है, अन्यथा आज के युग में कौन पिता अपने ही पुत्र को उसके कृत्यों के लिए दंडित करता है? परंतु शिवलीला एक ही समय में अब भी राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है।
5: शौनक जी, समय या काल चक्र के निर्धारक स्वयं परमेश्वर ही है।
6: अच्छा महाभाग, ये बताएं कि इस घटना के बाद समय चक्र ने क्या गति ली?
5: समय बहुत बलवान होता है शौनक जी। अब देखिए, आज की भेंट का समय समाप्त हो चुका है, अगली भेंट कब होती है, क्यों ना इसे भी समय पर ही छोड़ दिया जाए।
6: जैसी आपकी इच्छा महाभाग।
7: शिव महिमा के आज के प्रकरण में आपने शिव पुत्र अंधकासुर की उत्पत्ति तथा व्याभिचार में पड़ जाने के कारण स्वयं पिता शिव द्वारा उसका वध किए जाने की कथा सुनी। ये प्रकरण शिव पुराण के रुद्र संहिता पंचम खंड के 41वें अध्याय से लेकर 48वें अध्याय तक से लिया गया था।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

भरद्वाज आश्रम से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां कुछ आदिवासी स्त्रियां मिलती हैं और सीता से प्रश्न करती हैं। सीता जी लजाकर कुछ इस तरह कह उठती हैं।

उधर भरत जी अयोध्या से प्रभु राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और राम जी से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना करते हैं।

राम जी की आंखें भर आती हैं और अपनी खड़ाऊ भरत जी को देते हुए अयोध्या की गद्दी संभालने के लिए वचन लेते हुए विदा करते हैं।

प्रभु श्री राम भरत जी को विदा कर पहुंचते हैं पंचवटी, जहां पर 14 वर्ष बिताने का निर्णय लेते हैं। तभी सूपनखा वन में घूमते घूमते प्रभु श्री राम को देख मुग्ध हो उठती है और राम से विवाह करने का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से रखती है।

प्रभु श्री राम सूपनखा का आत्मनिवेदन न मानते हुए अपने भाई लक्ष्मण को इशारा करते हैं और भाई लक्ष्मण अपने प्रभु राम जी का आदेश पाते ही तीर से सूपनखा की नाक काट लेते हैं। और उधर रावण के दरबार में राग रंग उत्साह जेहर देखा हर तरफ खाली वाहे वाह। इतने में रोवत उहां गैल सूपनखा आए, पड़ल रंग में भंग औ गैल सनाका छाए। और यह देख रावण अपनी बहन का हाल मारीच को समझा बुझाकर उसे स्वर्ण मृग के रूप में पंचवटी भेजते हैं।

अपमान का बदला लेवे बदे सीखौलस। बहनी के अपमान का बदला लेवे बदे सीखौलस। काना भूसी कैलस हंस के ऐसन मन।

कठिन के दुष्प्राप्य ज्ञानना स्वरूपे रहेला दुर्गम ध्यान थी प्रकाशित थनारा जमनी माया मोह अकड़ छे ए दुर्गम मार्ग में रहेला दुष्प्राप्य अर्थना स्वरूप वाला दुर्गा देवी ने अमे प्रणाम करीश। तोज साथे दुर्गम दैत्यना संहारक विकट आयुधन धारण करनारा अविचिन्त्य अंगो वाला दुर्गम मार्गे गति करनारा होवाथी दुर्गम्य मुश्केली थी प्राप्त थनारा कम नसीब वाला मानसोना रक्षक स्वामिनी दुर्गा देवी खरेखर परमेश्वरी ये माता दुर्गम्य छे दुष्टो माटे भयंकर छे तमनो क्रोध भयानक होय छे दुष्प्राप्य मुश्किलियों ने टाळनारा दुर्गा माता वंदन करी छे जे मनुष्य दुर्गाना आ नामोनो पाठ करे छे ते बेशक बधाज प्रकारना भयमांथी मुक्त थाय छे।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: पीसी आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति। अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

ये कौन है लुटेरे जो दिन रात हम सबको लूटा करते हैं और हम इन सबको प्रसन्न रखते हैं, खिलाते पिलाते रहते हैं, ये हमको लूटते रहते हैं। तो इन्हें पहचानिए, इनसे दूर रहिए, नहीं तो

पीयूष पवार जी संगत कर रहे हैं। अब इनका विशेष कमाल देखिए, मैं जो सरगम गाऊंगा ये आपको संतूर पे बजा के सुनाएंगे, और जरा ध्यान से सुनिएगा ठीक बजाते कि नहीं बजाते। इनको मैं एक ही शर्त पर बंबई से यहां तक लेके आया हूं कि ठीक नहीं बजाएंगे तो यहां छोड़ के चला जाऊंगा, तो जरा ध्यान से सुने फिर।

बंबई वापस ले जा रहा हूं। इनका एक लड़का है 6 साल का, वो भी बहुत अच्छा संतूर बजाता है और अपने स्कूल में, स्कूल के फंक्शंस में संतूर बजा के सुनाता है तो सब उसे बहुत प्यार करते हैं। तो एक बार उसके टीचर ने पूछा, बेटा बहुत अच्छा संतूर बजाते हो, तुम्हारे घर में और भी कोई संतूर बजाता है? तो उसने कहा, हाँ और लोग अभी सीख रहे हैं। फिर टीचर ने पूछा, बेटा तुम लोग कितने भाई बहन हो? तो उसने कहा, हम लोग 14 भाई बहन, 8 भाई हैं 6 बहनें। तो टीचर ने कहा, सच में? कहता, हाँ जी सच में। फिर टीचर ने पूछा, बेटा तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? उसने कहा, वह यही काम करते हैं। क्योंकि टाइम मिलेगा तो और कुछ करेंगे।

सुनना बड़े पुण्य का काम है आप लोग कर रहे हैं, और भगवान का भजन गाना उससे ज्यादा पुण्य का काम है। तो कितना अच्छा हो, आप भी गाइए, हम भी गाएं, सब मिलकर ये पुण्य कमाएं। तैयार हो जाइए, पहले मैं गाऊंगा, आप सुनिए, फिर आप गाइए, मैं सुनूंगा।

अयोध्या में हर्ष और उल्लास के साथ श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं, परंतु विधि का विधान कुछ और था। राजा दशरथ ने माता कैकेयी को 3 मांगे पूरी करने का वचन दिया था। विधि की प्रेरणा से माता कैकेयी ने राम के 14 वर्ष वनवास की मांग की। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचनु न जाई। और पिता के वचन को निभाने के लिए राम जी चले वनवास।